0: hat for your handsome boyfriend.
1: No, I'm not her.
2: तूने तो ऐसे रिया किया जैसे तुझे किसी ने गाली दे दी हो, इतनी बुरी हूँ मैं।
1: मैंने तो ये सोच के कहा था लेकिन तुझे बुरा ना लग जाए।
3: पता नहीं मैं तेरे लायक भी हूँ या नहीं।
2: है कपड़े पहन के कौन सोता है?
3: तो वैसे ही
2: ट्राई करना।
4: योर गर्ल्स एंड योर बॉयज विल थैंक यू।
2: बेबी यार इट्स टू लेट।
1: मैं तो सिर्फ अपने बॉयज को थोड़ी फ्रेश एयर दे रहा था।
2: रियली
1: व्हाई नॉट।